0: सूरमानी आया जेड़ा साडा राह रोक सके।
1: सदा राठां दे करे ही राठ जम दे, काम सुन के यारां दा वैरी कंब दे, हत्तीवीं बाज नीवी पागे लंघ दे, हत्तीवीं बाज नीवी पागे लंघ दे, रखी दी नी पल पले आम शूक दी, ओ मैनू जम दे नू, जम दे नू।

0: आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

सफर तू बता मुझको, चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया की जन्नत।

0: के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: नफरत में तो लेना कोई
1: हिप हॉप बनी लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया, मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया, टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया, बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है। मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

0: voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है.
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो.
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार.

क्या हमारी किस्मत में ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

0: where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

तय न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।